करा देश नु कोए किए कम कि हा नाम का नु किए कम ते हिया हा नु से नाम का कि नु से नाम हा चेम करा हिया को कोना ती हा नाम

इसका एफ एम कवा एल्फ कवा 15 मिनट है के माँ जो है खमा को बुंगा तागे दी आख इन टू नस्टेम को जुआ के यूनी ट्वेटेशन सीजन टू नखम को जुआ दस उसी से का के रादो के माँ जो है खमा को उसी से के कुमसंग माँ बोले क्या को मंग आधे जी के मेट कन को आधे जी के कोई आधे जी के मोले जुआ खुमगांग है तेरे को चु आवंग माँ बोला गंजिचा उनको सागो उसी से का के रादो के मा जो है कमो को यूजे से के कोई राधो के सगो जी के कौन काया ता मासे दे के कवा चल में गो का के सोन दा खा तम तो को ए आउ नो लंग मंग गो सगो जी से का के राधो के वो लंग नो तन छों मंग गो सगे मा जो है कमो को बुंगा अ गो से दे के कवा वो लंग को एम तन को छों गा ता अ सगो जी से का के राधो के वो लंग नो या कौन गा के खना मासे दे के कवा सोन दा खा चल में गो तम तो को आउ नो लंग मंग गो सगो जी से का के वोलंग मा कोंग ना के या सिकम मा बे या जो है के वोलंग मा वो जेटमन स्टाइल ओ मैनुअल अदेव के नगोसी आवा 12 रे